ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। मुनीश जौली यह कार्यक्रम लेकर आएंगे। इसके बाद श्रोता सुनेंगे 7:05 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR निखिल कुमार के साथ।

गुड मॉर्निंग डाली एनसीआर, आप सुनेंगे मुनीश चौली के साथ और इसके बाद होगा दिल के तराने गाने नए पुराने 9 बजे। निहारिका आपके साथ होंगी 10:05 पर और आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक। हमारे श्रोता सुनेंगे 11 बजे बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता के साथ और इसके बाद होगा वेस्टर्न म्यूजिक 12:05 पर और इसके बाद श्रोता सुनेंगे 1:05 पर रेनबो हेल्पलाइन बबीता त्रिपाठी के साथ। प्रियंका लेकर आएंगी 2 बजे कार्यक्रम आशियाना।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना

0: बीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
5: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिएं देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53 रुपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी है और आपके साथ मैं हूँ बबिता त्रिपाठी। शो है रेनबो हेल्पलाइन और हमेशा की तरह रेनबो हेल्पलाइन में एक हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो किसी खास टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ना सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपको गाइड करेंगे, आपको राह दिखाएंगे और कहीं आपके रिश्तों में ब्लॉकेज आ रही है तो उसको खोलने का काम करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ इस तरह से है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल सेठी से जो कि हैं लाइफ कोच। तो सबसे पहले कहते हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी, एक बार फिर से।
2: लक्ष्मी जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है
1: जी। तो मेरा नाम वैसे बबिता त्रिपाठी है
2: लेकिन उन्होंने राजलक्ष्मी बताया मेरे को, सॉरी।
1: अच्छा, वो हमारे बॉस का नाम है। और तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। और फोन नंबर्स आप सबके लिए हमेशा की तरह खुले हुए हैं और उनका उपयोग करिए। और अगर रिश्तों में कहीं भी कोई ब्लॉकेज आ रही है तो उसके लिए आप गाइडलाइंस इनसे ले सकते हैं। किस तरह से वो गाइड करेंगे अभी थोड़ी ही देर में आप देखिएगा और आपके जो रिश्ते हैं वो एकदम मधुर हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 2342-1080 या 2342-1084 ये लाइंस खुली हैं, इनका लाभ उठाइए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। बहुत सिंपल है, एक नंबर है 9868107070, इस पर अपनी बात लिखकर भेजिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है रिश्ते में तो उसका हल यहाँ पर जरूर निकलेगा। तो अनिल जी, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? ये रिश्तों में इतनी सारी उलझने क्यों हैं?
2: देखिए, ऐसा है कि आज भाग दौड़ की जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे पीछे रहेगी तो वो रिलेशन ही रह गए।
1: हाँ, ये बात
2: हम
1: है।
2: सब कहते हैं ना, कमर्शलाइज हो गए सब कुछ। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम पैसा कमाने की दौड़ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि रिलेशंस के लिए समय नहीं देते। और जब आप किसी चीज को समय नहीं देते, देखिए, आप एक बीज भी कहीं डालें, पौधा लगाएं और उसको हवा पानी ना मिले, उसको खाद ना मिले तो मुरझा जाएगा, वो कभी फल फूल नहीं सकता। उसी तरह से रिलेशनशिप्स भी हैं। आज देखिए ना, आप शादियों का हाल क्या हो गया है, लव एट फर्स्ट साइट एट डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति वो फेथ बन ही नहीं पाता, क्योंकि हम एक दूसरे को समय नहीं देते, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते और उसमें फिर जो है ऊल जलूल हम उसमें डिसीजन ले लेते हैं और रिएक्शंस ज्यादा होते हैं, रिस्पॉन्सेस कम है। आजकल आदमी के अंदर पेशेंस कम हो गया है और रिएक्टिव बहुत हो गया है।
1: और ये पेशेंस की कमी भी तो कुछ मतलब ऐसे चीजें होंगी जिनकी वजह से हो रहा है, और उनको हम दूर करें, कोशिश करें, कैसे करें?
2: देखिए, समय कम है, इंसान ज्यादा अचीव करना चाहता है कम से कम समय।
1: मतलब लोग एम्बिशियस ज्यादा हैं,
2: बहुत ज्यादा, और मतलब एक्सपेक्टेशन कैपेबिलिटीज और अपनी उसको देख के शायद आगे नहीं बढ़ते, वो दूसरों से कंपेरिजन ज्यादा कर रहे होते हैं। मुझे उससे ज्यादा कमाना है, उसका मेरे से ज्यादा कैसे, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है। आज इंसान अपने दुख से नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी है।
1: ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं रही थी
2: ना, पहले नहीं थी। पहले लोग आपकी खुशी में खुशी, सुख में खुशी होते थे और आपके साथ सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि रिश्ते एक बड़े ट्रांसपेरेंट से रिश्ते होते थे और बड़े दिल से रिश्ते होते थे। आज दिमाग से रिश्ते होते हैं, आज रिश्ते दिल से नहीं होते, दिमाग से होते हैं। अगर मेरी आपसे कोई जरूरत है या कोई मेरा पर्पज हल हो रहा है तो मेरा आपसे रिलेशन है, अदरवाइज आप कौन है, मैं कौन है, मैं जानता ही नहीं। तो बेसिकली आज की डेट में रिश्तों के मायने ही बदल चुके हैं
1: जी, बिल्कुल। प्रॉब्लम्स तो हर जगह देखने को मिल रही है, चाहे माँ बाप के साथ रिलेशनशिप हो, टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ हो, पति पत्नी का तो है ही बहुत कॉमन, और हम सब रोज कुछ ना कुछ नया।
2: वृद्धाश्रम हमारे देश में इतने हुआ करते जितने आज हैं।
1: तो ये सब डिस्कशन का विषय है और जरूरी है कि इन पर बात करें और इन पर सोचें, थोड़ा ठहरें और अपने आप को, अपने लोगों को समय दें, और समय दें तो शायद समाधान भी निकल आएगा। और इस समाधान को और कैसे निकाल सकते हैं हम बात करेंगे। अगर आपके साथ कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है किसी रिश्ते में, तो फटाफट फोन घुमाइए ना 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल लगाइए और डॉक्टर अनिल सेठी से अपनी बात, अपने दिल की बात कहिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं 9868107070। रेनबो हेल्पलाइन रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर आज बात कर रहे हैं हम डॉक्टर अनिल सेठी से। अपने

अपने तो अपने होते हैं, हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि अपने लोगों से हमेशा बनाकर रखो, रिश्तों को मैनेज करके रखो, कोई भी रिश्ता है छोटे बन के रहो या फिर सहन करना सीखो। लेकिन इतना कुछ सिखाने के बावजूद, करने के बावजूद, देखने के बावजूद, कई बार हम फैमिलीज में भी अच्छा कुछ देख रहे होते हैं, हमेशा अच्छी फैमिली में रहे होते हैं जहाँ पर बॉन्डिंग्स अच्छी थी, लेकिन आप कुछ और रिश्तों से मिलते हैं, फिर आप वहाँ पर ट्राई करते हैं, वो जो कुछ भी आपने सीखा है वो वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं फेल हो जाते हैं और वो रिश्ता टिक नहीं पाता है। तो ऐसे में रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या पकड़ कर रखना चाहिए या क्या करना चाहिए, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपके लिए भी ऐसी कुछ समस्या आती होगी ना, आपके पास अगर कोई ऐसी समस्या है जहां पर किसी भी रिश्ते को मैनेज करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आज का टॉपिक यही है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिस पर हमारे साथ डॉक्टर अनिल सेठी जुड़े हुए हैं जो कि लाइफ कोच हैं, और वो इस पर डिटेल में बात करेंगे, आपकी समस्या का हल सुझाएंगे। कैसे बात करेंगे, 2342-1080 से जब आप फोन करेंगे या 2342-1084 से आप कॉल करेंगे और उनसे बात करेंगे। अगर दिल्ली एनसीआर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाकर ये नंबर्स डायल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल भेज दीजिए, शो में शामिल हो जाएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, रेनबो हेल्पलाइन 9868107070 यह है हमारा व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर 9868107070। वैसे तो सवाल आने शुरू हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो आपका सवाल लेट आए और आपका सवाल कहीं ना कहीं रह जाए, तो फटाफट भेजिए, इन नंबर्स का लाभ उठाइए, इस शो का लाभ उठाइए। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी और मेरे साथ डॉक्टर अनिल सेठ।

0: बताने वाले हैं कुछ और रीजंस जिनकी वजह से ये दरारें, ये तकरारें, ये खटास की बातें रिश्तों में होती हैं।
1: जी जी, देखिए पुराना जमाना था तो वहां पे एक ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी और वर्किंग स्टाइल भी डिफरेंट था, लोग इतने ज्यादा कमर्शलाइज या जॉब्स के इतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं था, तो पुराने जमाने में करियर ऑप्शंस भी लिमिटेड होते थे। तो उस समय पे लोगों के घर छोटे हो तो भी दिल बड़े होते थे, आज घर बड़े हो गए दिल छोटे हो गए। अब देखिए शुरुआत कहां से होती है, मियां बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं, उनका एक बच्चा है अमूमन या मैक्सिमम दो बच्चे हैं। अब वो बच्चे कौन पाल रहा है, आया पाल रही है या क्रेश पाल रही है। बच्चों को जब माता पिता की जरूरत है माता पिता नहीं मिलते, अब जो जो बंदा पेड सर्विस दे रहा है उससे आप प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते। आप लकी हैं तो आपको मिल सकते हैं अच्छे लोग, मैं उसमें कतई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अब होता क्या है कि हम अपना समय न दे पाने की गिल्ट से भरे होते हैं और उस बच्चे को हम गैजेट्स देके, पैसे देके या खिलौने देके सोचते हैं हमने कंपनसेट कर दिया
0: और बच्चा और जिद्दी होता जाता है।
1: बच्चा उसको जो एक्चुअली चाहिए वो नहीं मिल रहा और वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप सोचिए पुराने जमाने में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी ही हीरो हुआ करते थे बच्चों के, बच्चे उनके जैसा बनना चाहते थे। आज तो माँ बाप सामने नहीं होते, तो बच्चे जो गेम्स खेलते हैं उस गेम में कोई आर्टिफिशियल करेक्टर है, इमेजिनेटिव करेक्टर है, बच्चा उससे इम्प्रेस हो गया, उसके जैसा बनना चाहता है। आप देखिए ना, रोज आप देखते हो कोई बच्चा गेम खेलते खेलते छत से कूद गया, कहीं कुछ हो गया, क्यों? क्योंकि वो उसके साथ अटैच हो गया है, माता पिता के साथ अटैचमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि माता पिता समय नहीं दे पा रहे।
0: तो सर क्या समय की मजबूरी ही सबसे बड़ा कारण है?
1: वन ऑफ द मेन रीजन है, वन ऑफ द मेन रीजन मैं कहूंगा, क्योंकि आज की डेट में ना क्वांटिटी ऑफ टाइम की जगह क्वालिटी ऑफ टाइम की जरूरत है।
0: हाँ, बिल्कुल वही।
1: और वो कम्युनिकेशन, बेसिकली सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन। अगर आप कुछ 15 मिनट 20 मिनट भी बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और बच्चे को एहसास दिलाते हैं कि बेटा हम आपके साथ हैं, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। क्योंकि होता क्या, देखिए कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती, आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हमारे देश में आपकी बात सुनने के लिए पेड सर्विस शुरू हो चुकी है। हाँ। कि जहां पे एक बंदा सामने, बंदा या बंदी बैठ के आपकी सिर्फ बातें सुनेगा, कितनी शर्म की बात है। मतलब हमारा देश जो कि रिलेशनशिप्स और फैमिली वैल्यूज के लिए जाना जाता है, वासुदेव कुटुंबकम को हम लेके चलते हैं और यहाँ पे हमें दूसरों को पैसे देके, क्यों? हमें दूसरों पे भरोसा नहीं रहा कि आज बंदा इतना कमर्शलाइज या इतना पैसे के पीछे पागल है कि अगर मैंने इसे कुछ बता दिया तो इसका मिसयूज ना कर ले, इसका कुछ फायदा ना उठा ले। तो आई ट्रस्ट यू इज अ बिगर कॉम्प्लीमेंट देन आई लव यू। और देखिए ट्रस्ट डेफिसिट वही होता है जहां आपको, मतलब जहां पे आपको ट्रस्ट होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है पति पत्नी के बीच में और आज जिस स्पीड से डाइवोर्सेज हो रहे हैं, जिस हिसाब से क्राइम हो रहे हैं, मतलब देख के मुझे हैरानी होती है,
0: विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है।
1: मतलब ऐसे ऐसे खतरनाक इंसिडेंट सामने आते हैं, मतलब बिलीव नहीं कर सकते आपकी कैसे कैसी चीजें हो रही।
0: लोग इंसान के रूप में किस तरह से भेड़िए घूम रहे हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये उपमा देना कई बार लगता है कि सही है।
1: आपको आज की डेट में बेटी की शादी करना कितना बड़ा प्रोजेक्ट है,
0: बहुत रिस्की है। अब पहले ये, अब अगर हम सिर्फ पहले वाली चीजों को फॉलो करें तो पहले ये कहा जाता था कि दो फैमिलीज देख के, और आज एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप सबके सामने, हम सबके सामने आया कि फैमिलीज देख के शादी की जा रही हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो सकती है और
1: प्री
0: मैरिटल फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है।
1: प्री मैरिटल काउंसलिंग में इसीलिए पति पत्नी सास ससुर इमीडिएट फैमिली सबको काउंसलर से मिलाया जाता है आज की डेट में और जहां पे जरा सा भी डाउट होता है हम लोग उनको मना कर देते हैं कि ये घर आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है या ये, क्योंकि दोनों के आपस में विचार मिलने बहुत जरूरी है। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी लेट मैरिजेज हो रही है, ये भी एक बड़ा एक रीजन है कि लेट मैरिज की वजह से एडॉप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है।
0: बिल्कुल, अडॉप्ट नहीं कर पाते उस फैमिली को, उस या हस्बैंड को,
1: बिल्कुल
0: या वाइफ को,
1: एक दूसरे के व्यवहार को एक्सेप्ट करना तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे के उसपे मोल्ड होना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
0: और लेकिन कोशिशें वही की जाती हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है।
1: बिल्कुल, मतलब अगर
0: तो
1: आप
0: वो नए जमाने के हिसाब से एक पार्टी अगर चेंज हो गई है, दूसरी नहीं कर पाएगी, तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर
1: दो महीने के बच्चे को आप, उसने दूध अगर नहीं उसको पीने की इच्छा, तो जबरदस्ती पिलाओगे उल्टी कर देगा।
0: हाँ बिल्कुल,
1: एक दो महीने का बच्चा।
0: हाँ,
1: और आप 25-28 साल के बच्चे, लड़का या लड़की को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चेंज हो जाएगा?
0: नहीं होते,
1: नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: तो बेसिकली हमारे बेसिक्स बदल चुके हैं। हमारे बेसिक्स के हिसाब से हमें नए माहौल के हिसाब से नए फार्मूलाज बनाने पड़ेंगे।
0: तो चलिए सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि ये शो आप सबके लिए है, तो आपकी जो बातें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिलहाल एक लाइन पर कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैसेजेस लेते हैं कुछ। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटा शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी राकेश जी, बताइए
2: जी। तो मेरा सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार डॉक्टर साहब को, नमस्कार बोल रहे हैं।
2: जी जी, तो
1: आवाज मुझे नहीं आ रही।
2: जी जी जी, तो मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि आजकल जो कुछ बच्चे और बच्चा कॉलेज और स्कूल में फ्रेंडशिप जो बना देते हैं, कई बार क्या होता है उन मुझे खटा अच्छा चाहते, कई बार जो है आपस में लड़ बैठते, तो उनको क्या राय देगी आप?
0: तो कई बार दोस्ती में खटास आ जाती है स्कूल कॉलेजेस में जो फ्रेंड्स होते हैं, तो ये सभी फ्रेंड्स पर लागू होगा, वैसे स्कूल कॉलेजेस के फ्रेंड्स भी और बाहर भी। तो हम बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम सवाल है, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिससे जिसमें हम जो बातें माँ बाप को भी शेयर नहीं कर पाते, कई बार उनको करते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप को भी मैनेज कर पाना लाइफ लॉन्ग बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्यों हो रहा है और क्या कैसे कर सकते हैं बताइए सर?
1: आज की डेट में अच्छे दोस्त मिलना,
0: हाँ,
1: अगर आपके पास जिंदगी में एक तो अच्छा दोस्त भी है,
0: हाँ,
1: तो आप खुशकिस्मत हैं
0: जी।
1: तो इसमें टाइम टेस्टेड कहते हैं रिलेशनशिप को, जिसने टेस्ट ऑफ टाइम दिया हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप हर किसी को तो अपनी बातें बताते नहीं है, लेकिन बचपन से जो आपका दोस्त है यू शेयर, और शेयरिंग दोनों तरफ से हो रही है तो ठीक है, अगर सिर्फ एक ही बंदा शेयर कर रहा है तो गलत है। तो आपको थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा देखभाल के अपनी चीजें करनी चाहिए, और अगर आपको कहीं पे 1% भी डाउट है तो थोड़ा सा ब्रेक लगानी चाहिए मेरे हिसाब से।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर आपको एक भी अच्छा दोस्त आपको मिल गया है और उसके अंदर कुछ देखिए कमियां भी हो सकती हैं, आपके अंदर भी कमियां हो सकती हैं, तो अगर उसके बावजूद दोनों आपकी दोस्ती बचपन से अभी तक बरकरार है, और जितनी पुरानी दोस्ती होती जाती है उतनी आपके लिए वो जरूरी होती है, क्योंकि दोस्तियां बहुत जरूरी हैं। क्योंकि किसी एक बड़े आदमी ने कहा था कि कोई भी इतना अमीर नहीं कि जो अपना बचपन खरीद सके, ये सिर्फ आपके बचपन के दोस्त हैं जिनके साथ आप वापस बचपन में जा सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसी रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप अपने बचपन के दोस्तों के साथ होते हो। तो मतलब मैं खुद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे पास लाइफ में, और वो जब भी हम लोग मिलते हैं ना तो हमारा वो समय कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। अब लेकिन उसके अंदर हर एक की शेयरिंग कितनी है, हर एक ने अपने हिसाब से शेयरिंग की हुई है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने उसको कोई छोटी सी चीज शेयर करी और उसने वो आगे किसी को बता दी तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए।
0: ओके,
1: मेरा ख्याल है कि टेस्ट कर लेना चाहिए जरूर, कोई उसमें बुराई नहीं है बिल्कुल भी। दोस्ती फिर भी रहे, दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप अपना दिल हल्का करने के लिए कुछ बता रहे हैं किसी को तो वो सामने वाले को एक बार टेस्ट तो कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जिस बैंक में पैसे जमा कर रहे हो उस बैंक की क्रेडिबिलिटी तो देखोगे ना एक बार।
0: तो दोस्तों को भी बीच बीच में चेक करते रहना yes, बहुत जरूरी absolutely. है, और इस वजह से कई बार रिश्ते नहीं टिक पाते क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा या ब्लाइंडली भरोसा करते
1: हैं। एक रीजन और भी है उसमें कि देखिए आप हर वक्त उनके साथ नहीं है, हो सकता है इन बिटवीन उसकी परिस्थिति कैसी हुई हो, उसको कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो गई हो, वो गलत संगत में पड़ गया हो, आपको नहीं पता।
0: और कई बार हमारी ये गलतफहमी हो जाती है, हम उसके बारे में कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, हम खुद कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं।
1: तो कम्युनिकेशन गैप भी आल्सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट
0: बड़ी प्रॉब्लम है जी। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौट कर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं और फोन्स भी आ रहे हैं, फोन लाइन्स भी खुली हुई हैं आप सबके लिए। फटाफट इन नंबर्स का यूज कीजिए, 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करिए या 9868-107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके बताइए कि आपके रिलेशनशिप में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर अनिल सेठी लाइफ कोच हमारे साथ हैं रेनबो हेल्पलाइन में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: दिल का रिश्ता हमेशा से ही प्यारा रहता है, बस वो सच्चा होना चाहिए, चाहे पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, या बच्चों का अपने माँ बाप से हो, या फिर टीचर्स से। ये रिश्ते जो है ना, हमें थोड़ा सा खाद पानी, जैसा कि सर ने कहा, डालते रहना चाहिए ताकि ये बने रहें। हम सबको पता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एफर्ट कितना लगा रहे हैं ये शायद हम कहीं मिस कर रहे हैं। टाइम नहीं दे पाना अलग बात है, आज का लाइफस्टाइल चेंज है अलग बात है, लेकिन हमें भी पता है कि जो असली खुशी है ना, वो रिश्ते ही देते हैं, और उसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिख रही हैं कि आफ्टर माई पेरेंट्स डिमाइज माई सिबलिंग्स हैव सॉलोड माई शेयर इन द इनहेरिटेंस, माई लव फॉर देम हैज डिसअपियर्ड। इफ आई फाइल अ सिविल सूट इन कोर्ट, दैट मीन्स रिलेशनशिप्स आर ब्रोकन फॉर होल लाइफ। वॉट वुड यू रिकमेंड?
1: जोया जी, आपने एक तो ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखा, ये बड़ी खुशी की बात है
0: जी।
1: देखिए, आप बहुत पेन में होंगे, क्योंकि अगर अपनों से तकलीफ होती है, अपनों से जब धोखा मिलता है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या आपको पता है कि आपका कुछ था, मतलब आपके नाम पे कुछ था, या पेरेंट्स आपके लिए कुछ छोड़ के गए थे? मुझे नहीं पता। आपको उसमें थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन अपडेटेड रखनी चाहिए, और अगर कुछ था और लीगली अगर उसमें अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, अपने सिबलिंग से बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है बातचीत से भी सलूशन निकल सकता है। लॉ सूट लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप बातचीत करें और बातचीत से ही सलूशन निकल जाए तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले उनसे बातचीत करें, अगर बातचीत से सलूशन निकल जाए बहुत अच्छी बात है, ना निकले तो फिर एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पोजीशन, कि आपके पास कुछ लीगल उसका कुछ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो जरूर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी गलत है कि हर चीज में आप बिल्कुल गिव अप कर दें, लेकिन शुरुआत सीधे लॉ सूट से नहीं होनी चाहिए, बातचीत से होनी चाहिए। हर चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, हो सकता है उनको पता ही ना हो कि आपका भी कुछ उसमें शेयर था। मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे देश में विल बनाने का इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, लोग बहुत सारे भूल जाते हैं। मतलब आइडियली होना चाहिए कि जो भी बुजुर्ग माता पिता हैं उनको अपना विल बना देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, और बाद में दिक्कत होती है, बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप उसको थोड़ा अपने पहले अपनी ग्राउंड चेक करें, उसके बाद अगर आपको लगे हाँ आपका फेयर शेयर था कुछ उसके अंदर, तो आप अपने जो भी आपके सिबलिंग्स हैं उनसे बात करें, और अगर वो एमिकेबली कुछ सोल्यूशन निकल आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं निकलता तो फिर आपको कोर्ट में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: बारिधि का मैसेज आ रहा है, और इन्होंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड वर्किंग है और मैं ये स्टे एट होम मदर हूँ। मैं स्टे एट होम वाली मदर हूँ, जो मतलब घर से ही इन्होंने काम किया हुआ है, और चाइल्ड केयर इनके ऊपर ही है, और इसकी वजह से मैं बहुत थक जाती हूँ। कभी कभी इस वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब रहता है, क्योंकि मुझे अपने लिए पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती है। घर के काम मेरे हस्बैंड ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते घर के कामों में, मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ, और उनको ये बात शांति से कैसे समझाऊँ?
1: देखिए, आप अकेली ऐसी नहीं हैं जिनके साथ ये परिस्थिति है, तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा, देखिए बच्चा या बच्ची जो भी आपके पास है, वो कभी ना कभी कुछ समय तो आपको देती ही होगी, कभी सोते समय या कभी खेलते समय। तो मुझे लगता है कि आपको पति के आने के बाद पति को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मुझे थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, थोड़ा सा हेल्प करो मेरे को, थोड़ी मदद करो, और वो प्यार से होनी चाहिए। मतलब आप ये मत मान के करिए कि मैं इतना कर रही हूँ तो आप ये करो, मतलब इट शुड नॉट बी डिमांडिंग और कमांडिंग, इट शुड बी एक पोलाइट कन्वर्सेशन, इट शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव कन्वर्सेशन, क्योंकि अगर

0: ऑल्टरनेटिव होगा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कन्वर्सेशन में बहुत सी बार शब्द से ज्यादा किस ढंग से कहे गए शब्द हैं उससे ज्यादा तकलीफ होती है लोगों को. तो उसका जरूर ख्याल रखिएगा. और बात करने में कतई कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है, आपको जरूर बात करनी चाहिए. और आप अगर अपने लिए समय चाहती हैं तो समय निकलना चाहिए. अगर सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है तो उनको सैटरडे संडे में कुछ आपको टाइम देना चाहिए, बच्चे को टाइम देना चाहिए. और उनको ये बात समझानी चाहिए कि पेरेंटिंग में दोनों का रोल होता है और बच्चे को दोनों की जरूरत है. तो मेरा ख्याल है कि वर्किंग है, पढ़े लिखे हैं आपके हस्बैंड, तो वो समझेंगे इस बात को. और अगर आपको इसमें कहीं पे दिक्कत आती है, वो नहीं, कुछ आपके एफर्ट्स उतने फ्रूटफुल नहीं होते, तो आप किसी काउंसलर से या ऑनलाइन पेरेंटिंग के सेशंस वालों से या काउंसलर से बातचीत करके सलाह ले सकती हैं. क्योंकि स्पेसिफिकली अगर कोई वहां पे दिक्कत आती है तो somebody can help you कि हाउ टू डील विद इट. क्योंकि देखिए, या उसके आपके बच्चे के दादा दादी ना नानी, उनको आप इन्वॉल्व कर सकती हैं कि आपको समय नहीं मिल रहा, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि कैसे कुछ आपको अपने लिए समय निकाल पाए आप. और मेरा ख्याल है कि आपको कुछ नहीं हो तो कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन रोज सुबह शाम शुरू कर देना चाहिए. वो ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन आप अगर वो देखेंगी तो आपको उससे आपको थोड़ी सी ये जो एग्रेशन है या जो आपके अंदर एंग्जाइटी है या जो आपको लग रहा है कि कुछ कमी है या गलत हो रहा है मेरे साथ, तो वो थोड़ा सा ठीक होगा. ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप अच्छा खासा आपका हंसता खेलता परिवार है, तो किसी एक छोटे से एक्शन रिएक्शन से वो गड़बड़ ना हो जाए. तो विश यू ऑल द बेस्ट.
1: प्रॉब्लम यही आती है कि हम छोटे से एक्शन रिएक्शन से कई बार बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुके होते हैं और उसके बाद रियलाइज़ होता है. जैसा कि अभी एक मेरे पास मैसेज आया है और उनमें भी सर यही हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो चुके हैं और अब उनको हस्बैंड को रियलाइज़ हो रहा है कि वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपनी फैमिली को वापस पाने के लिए. इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, डिस्क्लोज़ करने के लिए मना किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इनकी वाइफ और ये 3 ईयर्स से अलग रह रहे हैं और 12 साल की इनकी बेटी है, 8 साल का बेटा है और अब एक केस भी उन्होंने डाल दिया है इनके ऊपर और बच्चों से वो मिल नहीं पा रहे हैं, डिवोर्स की मांग कर रही हैं वो. लेकिन अब 3 ईयर्स के स्ट्रगल के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको अपनी फैमिली वापस चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं.
0: देखिए, कहते हैं जब जागे तब सवेरा. कई बार बहुत देर हो जाती, जैसे इनके केस में बहुत देर हो गई है कि अलग रह रहे हैं और 3 साल के बाद इनको रियलाइज हुआ है. तो आई विश थोड़ा जल्दी होता तो ये नौबत ही नहीं आती. लेकिन अगर इनका जो इनका अवेकनिंग है वो जेन्युइन है तो इनको एक्शन से प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मिसट्रस्ट इतना हो चुका है. क्योंकि 12 साल का बच्चा और 8 साल का बच्चा ऑलरेडी है, इसका मतलब 14-15 साल की रिलेशनशिप है. तो मिसट्रस्ट बनने में एक दिन नहीं लगा होगा, वो तो बहुत ओवर ए पीरियड टाइम आपने एक अपनी कंडीशनिंग कर दी.
1: फिजिकली ये अपार्ट अभी हुए हैं बट 3 साल पहले, लेकिन उससे पहले से ये सब शुरू हो गया था.
0: मतलब उन्होंने आपकी एक्शंस रिएक्शंस सब देखे होंगे. मुझे नहीं पता आपके बीच में क्या क्या हुआ, वर्बल कितनी ऊंची नीची बातचीत हुई या कोई फिजिकल भी एक्टिविटी हुई, मुझे नहीं पता. लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आपको पूरा जी जान लगा के एफर्ट्स करने चाहिए. और क्योंकि अगर आज भी जुड़ जाएं वापस, कहते हैं ना रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़ तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, गांठ तो पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी ना होने से अच्छा है. तो मैं इसलिए आपको पूरी शुभकामनाएं दूंगा कि आप उसमें अपने एफर्ट्स पॉजिटिवली, विदाउट शोइंग टेंट्रम्स, विदाउट शोइंग एनी नेगेटिव इफेक्ट, विदाउट यू नो गिविंग पास्ट रेफरेंसेस. क्योंकि जब ये डिस्कशंस होते हैं ना तो लोग पास्ट रेफरेंसेस बहुत देते हैं और वहां पे सारी कहानी खराब हो जाती है. अगर आपका सामने वाला, अगर आपने डिसाइड किया हुआ कि मुझे रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, तो आपको ठंडा होना पड़ेगा, बिल्कुल ठंडा होना पड़ेगा. और आपको अपनी पास्ट गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी. अगर आप अपनी, कहते हैं आई एम सॉरी डज नॉट मीन यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, इट ओनली मीन्स आवर रिलेशनशिप इज बिगर देन अवर ईगो. तो अगर आपको माफी भी मांगनी पड़े तो मुझे लगता नहीं कि आपको उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए. और अगर वो वाइफ आज आपकी इतनी जिद पे अड़ी है कि आपको अलग चाहती है, डाइवोर्स चाहती है, तो कहीं ना कहीं कुछ मेजर डैमेज हो चुका है.
1: बिल्कुल,
0: तो अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे कि वो नेगेटिविटी खत्म हो जाए और पॉजिटिविटी वापस चालू हो जाए।
1: और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके सवाल आने चाहिए। 2342108023421084 पर कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए फटाफट अपना सवाल भेज दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 9868107070 पर लिख कर भेजिए आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से और किस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जरूर लिखिए। और गाइडेंस देने के लिए डॉक्टर अनिल सेठी बिल्कुल तैयार हैं, जो कि लाइफ कोच हैं। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी, रेनबो हेल्पलाइन में।

0: रियली डरने की बात तो है, और हम सब जो पेरेंट्स हैं वो डरे हुए हैं, और डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि ज़माना बदल गया. अब बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है, और जब पता चलता है तो हम कहते हैं हाँ ऐसा भी होता है क्या. और ऐसा ही कुछ एक सवाल लेकर एक पेरेंट है हमारे साथ, और उनका भी कुछ इसी तरह का रिएक्शन है. तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका जो सवाल है वो जेन ज़ी को लेकर. हेलो.
1: हेलो नमस्कार, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ. मेरा नाम है शुभजीत.
0: जी शुभजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर.
1: डॉक्टर साहब को नमस्कार.
2: मैं आपको भी नमस्कार. नमस्कार
1: जी. मैं एक कठिन सवाल पूछने के लिए फोन किया, क्योंकि मेरे समझ में तो ये नहीं आता है. जैसे कि जेन ज़ी में काफी सारा टर्म्स आ गया है, जैसे सिचुएशनशिप, डिल्यूशनशिप, घोस्टिंग, ये सब मैं जिंदगी में नहीं सुना. इवन ब्रेड क्रम्बिंग किसको बोलते हैं वो भी पता नहीं, लेकिन सुनते हैं. अभी जैसे कोई भी सोशल मीडिया खोलो तो यही दिखता है. तो मुझे ये सवाल पूछना है कि ये टर्म हमारे जमाने में, जैसे कि मैं 80s का हूँ, तो हमारे जमाने में क्या ये सचमुच कुछ था, ऐसा कोई वर्ड, या शायद वर्ड नहीं, ऐसा कोई मतलब था, और न कि ये जेन ज़ी का खुद ही इन्वेंटेड वर्ड है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को और भी कॉम्प्लेक्स की तरह देखते हैं, या फिर इसका

0: वैरायटीज आ चुका है, और जो पेरेंट जो है ये इनको क्या एक्स्ट्रा केयर लेना है, क्योंकि मैं बहुत केयर्ड हूँ, क्योंकि काफी तरह केसेस आते हैं जहाँ पर पेरेंट्स को कोई शेयर नहीं करते बच्चे और बच्चे कुछ ड्रास्टिक स्टेप ले लेते।
1: ये सभी पेरेंट्स की लगभग प्रॉब्लम है, तो ध्यान से सुनिए उनकी बात। आपने
2: इतना बढ़िया सवाल पूछा है, उसके लिए बाप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये आज सब माता पिता का परिस्थिति है, सब माता पिता इससे जूझ रहे हैं
1: जी।
2: अब देखिए, जो जेन ज़ी के टर्म्स हैं वो रोज नए नए आ रहे हैं, और उसकी वोकैबुलरी और उसकी मतलब वो समझना कई बार सबके लिए उसे पेस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपका अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, ट्रस्ट बना हुआ है, आपको एक दूसरे पे विश्वास है, और बच्चा आपका आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा है, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देखें, अगर कहीं पे आपके बच्चे के साथ आपका कम्युनिकेशन ब्रेक तो नहीं हुआ है, अगर हो रहा है तो प्लीज उसे अभी ठीक कर लीजिए। वो हो सकता है कि मम्मी पापा दोनों का कम्युनिकेशन सेम ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से एक के साथ उसका 100% कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि दिक्कत वहां होती है जब वो बच्चे आपको अपनी बात शेयर करने से घबराने लगते हैं, क्योंकि आपके रिएक्शंस कई बार उनको पसंद नहीं आते, आप बड़े डिफरेंट ढंग से रिएक्ट करते हो। आज की डेट में आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। रिएक्शन बहुत खतरनाक चीज है, आपको रिस्पांस देना चाहिए, सोच समझ के रिस्पांस देना चाहिए, क्योंकि आपकी कही हुई हर बात टीनेजर्स को तो खास तौर से बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना डिफरेंट एक्शन लेने पे मजबूर कर देती है। और आज की डेट में जब माता पिता पूरा समय नहीं दे पाते हैं, मुझे आपकी परिस्थिति का पता नहीं है कि आप कितना समय दे पाते अपने बच्चे को, और आपके साथ कितना कम्युनिकेटिव है बच्चा आपका। अगर वो कम्युनिकेटिव है और आपको हर बात बता रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, अगर वो आपसे पूरी बातें बता नहीं रहा और आपको उसके सोशल मीडिया से या उसके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें पता चल रही हैं, तो इट्स अ बिग अलार्म फॉर यू। आपको अभी भी बच्चे के साथ अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिशें करनी चाहिए। बच्चे के साथ एक वो स्ट्रिक्ट पेरेंट वाले की जगह एक दोस्त बन के उससे बातचीत करनी चाहिए। कभी उसे आप बाहर वन टू वन, वन ऑन वन कॉफी पे ले जाएं, या जो उसको पसंद हो कुछ भी, तो उसमें जाएं और उससे इनफॉर्मल बातचीत करें, एक दोस्त के तरीके से बातचीत करें। उसको भी जब आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा कि पापा मेरे से हर बात कर लेते हैं, यू कैन शेयर योर पर्सनल स्कूल टाइम किस्सास, जस्ट टू गिव देम यू नो सम फेथ, सम ट्रस्ट।
1: और सर, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अपनी गलतियां भी बतानी जरूरी है।
2: वही वही वही वही,
1: क्योंकि बच्चों को लगता है कि पापा मम्मी परफेक्ट हैं, और उन्होंने कभी कोई गलती
2: हमारे यहाँ पे पेडेस्टल पे बढ़ा देते मम्मी पापा।
1: हाँ हाँ, और हम ऐसा ट्रीट भी ऐसे उनको करते हैं कि अपने आप को प्रेजेंट भी ऐसे कई बार करते हैं अननोइंगली कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं।
2: बिल्कुल,
1: जबकि हमने थाउजेंड्स ऑफ गलतियां की हुई होती है अपने।
2: बिल्कुल, हम वो छुपा के रखते हैं, हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, बच्चों के सामने अपने आप को बड़ा पिक्चराइज करते हैं, हमने बड़ी मेहनत की, हमने बड़े पापड़ बेले, हमने साइकिल चला के जाते थे स्कूल एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल से उसकी जरूरत आज बच्चों को नहीं है। बच्चों को लगता है फालतू की बातें क्यों कर रहे हो भाई। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है, आपने अपने समय में किया। देखिए, हर आज के जो 80s के लोग हैं उनके पास आज स्टोरी है बच्चों को सुनाने के लिए। लेकिन अगर आप के बच्चों को स्टोरी बनानी है, बच्चों की स्टोरी बनानी है, तो आपको उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटेटर का काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप उनके बायोलॉजिकल फादर जरूर हैं, पेरेंट जरूर हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी पे चलें ये जरूरी नहीं है। उनकी अपनी सोच हो सकती है। आज दिक्कत कहाँ होती है कि बंदे को उसका करियर क्या चुनना चाहता है, बच्चा क्या सब्जेक्ट चुनना चाहता है, उसमें भी दिक्कत होती है घर में।
1: बिल्कुल,
2: स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है, क्या पहने क्या नहीं पहने, यहां से शुरू हो जाती है चीजें। तो वक्त के हिसाब से हमें थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा।
1: सर, प्रॉब्लम ये है कि अभी आज के जो बच्चे हैं ना, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको सब क्लियर है।
2: yes.
1: कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो इतना क्लियर है कि आप आपको डाउट में डाल
2: हम,
1: सकते
2: हम उस जमाने में इतने क्लियर नहीं थे
1: बिल्कुल हम नहीं थे, हमें लगता था पापा मम्मी जो कह रहे हैं वो सही है,
2: सही है
1: तो उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए बल्कि इस चीज के लिए।
2: देखिए आज इंटरनेट के जमाने में, आज टेक्नोलॉजी के जमाने में बच्चे हमसे ज्यादा समझदार,
1: उनको कैपेबिलिटीज अपनी पता है, बिल्कुल
2: हमें ये मान लेना चाहिए
1: और हम ये मानने के लिए तैयार नहीं।

0: यही है। तो जेंजी कुछ भी है वो देखिए बेसिक्स हमारे कभी नहीं बदलते।
1: हाँ।
0: तो अगर आपका आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, कम्युनिकेशन चालू जारी है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनसे।
1: सर एक रिश्ता हमने बात नहीं की, ऑफिस के रिश्तों की। ऑफिस में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पता होता है कि अगला हमसे जलता है, अगला को मेरे से प्रॉब्लम है, बट उनके साथ मैनेज करके रहना है।
0: देखिए ये एक बड़ा डाइसी सिचुएशन है।
1: ऐसे में खुश कैसे रहे?
0: नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि आप भगवान तो है नहीं कि सबको खुश कर दें।
1: हाँ,
0: आज की डेट में लोग भगवान से भी पूरी तरह खुश नहीं है।
1: हाँ।
0: तो मेरा मानना यह है कि अपनी तरफ से कोई उसमें कंट्रीब्यूट ना करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए आप अपने कटोरे में मीठा रखें, कड़वा ना डालें कुछ भी। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो परसों नहीं तो नरसों, उसको भी रियलाइज होगा कि नहीं यार इस बंदे ने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया।
1: हाँ।
0: तो मैं इसके साथ ऐसा गलत क्यों कर रहा हूं? वो और वो रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, वो आपके कहने से नहीं होगा।
1: हाँ।
0: ये बात मान लीजिए,
1: थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा,
0: पेशेंस रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप इस तरीके की जो है ना, ये देखिए आज की डेट में आपका शुभ होते देरी से चिंता हो जाए, वो शुभ चिंतक है आपका।
1: तो बहुत शुभ चिंतक मिल जाते हैं ऑफिस में, ज्यादा मिलते हैं।
0: इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और ये दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ, आपको मानना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
1: अच्छा।
0: कि दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, और आपके आपकी परेशानी में चिंतित होने वाले लोग कम मिलेंगे। आपके साथ आपके दुख में खड़े होने वाले लोग कम मिलेंगे
1: जी,
0: और आपके सुख में खुश होने वाले भी नहीं मिलेंगे आपको। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
1: ये मान के चले तो खुश रहेंगे मेरे ख्याल से।
0: बिल्कुल, अगर कोई आपके सुख में खुश है तो आप बड़े खुशकिस्मत है।
1: अच्छा,
0: नहीं तो
1: बिल्कुल
0: मतलब आज की डेट में
1: सर, लेकिन ये पता कैसे करें कि ये वाकई में खुश है?
0: पता चले,
1: क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है कि लोग कई बार दिखा कुछ और रहे होते हैं, होते कुछ और।
0: देखिए वही वाली बात है ना, आपने जो बात कही वो एक जोकर से किसी ने कहा मुखौटा क्यों लगाते हो?
1: हाँ।
0: बोले जी मुखौटे तो सब लगाते हैं, मेरा दिखता है, लोगों का दिखता नहीं।
1: हाँ।
0: तो अब उसको तो आपको देखिए ओवर ए पीरियड टाइम
1: समझ में आ जाएगा,
0: असेसमेंट पता चल जाती है कि बंदा कह क्या रहा है, कर क्या रहा है। कथनी और करनी में जो डिफरेंस मिलेगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा।
1: यानी थोड़े रिश्तों को टाइम देना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है।
1: और वो टाइम अगर नहीं देते हैं तो वो कई बार वो बढ़ते चले जाते हैं, वो जो दरार है वो बढ़ती चली जाती है। तो खाई को बढ़ने न दे, किसी भी रिश्ते में थोड़ा टाइम दे और थोड़ा विश्वास अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखे, तो वो कोई भी रिश्ता है वो चलेगा। और इसी तरह का एक रिश्ता, रिश्ते की बात जिसके बारे में कितना भी बात करें वो कम ही पड़ जाएगा। सुनील का मैसेज नागालैंड से आया है और इन्होंने कहा है कि वो जो डिवोर्स के केसेस हैं, इतनी सारी फैमिलीज ब्रोकन क्यों हो रही हैं। ये काफ़ी लंबा मैसेज इन्होंने किया है, लेकिन बात एक ही है और इसके बारे में हमने काफ़ी बात की है। अभी फिलहाल टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन सर बहुत बातें जो आप बताते हैं दिल में बैठ जाती हैं, और जिस तरह से आप बोलते हैं लगता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता होगा। और बहुत सारे तारीफें भी इन्होंने लिखी है कि इनको शो अच्छा लग रहा है और मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो सर क्योंकि टाइम बहुत कम है, चलते चलते कुछ दो चार लाइनें आपकी हो जाएं जो आप हमेशा मोटिवेट करके जाते हैं।
0: ऐसा है कि अगर जिंदगी में रिश्ते नहीं हो तो कुछ बचता ही नहीं है। जिंदगी में रिश्तों की बहुत जरूरत है, हर किसी को जरूरत है। यह आपका सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। और अच्छे रिश्ते कमाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अच्छे रिश्ते, अगर आपके आसपास कोई अच्छा रिश्ता नहीं तो आप बन जाइए ना। अगर आप एक अच्छा रिश्ता बन जाएंगे किसी के लिए तो दूसरा भी रिश्ता रेसिप्रोकेट करना ही पड़ेगा उसको। बदले में वो आपके लिए अच्छा रिश्ता बनेगा ही बनेगा, वो चाहे भाई का हो, दोस्त का हो, कोई भी हो। और इनवेरिएबली कभी ना कभी वो चीजें आपकी मर्जी के हिसाब से होंगी, जब आप जैसा आप चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अपना हर चीज दो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको बार बार सिग्नल गलत मिल रहा है तो रुको। वो भी देखना चाहिए
1: जी,
0: कि आप एक लिमिट तक ही जा सकते हो, आप बिल्कुल अंधे होके नहीं चढ़ सकते कि भैया ये तो बंदा समझता ही नहीं, कुछ अपना अलग ही दुनिया में जी रहा है, कुछ अलग ही कर रहा है। तो आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
1: यस, तो हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है और हमें थोड़ा सा टाइम देकर समझकर कम्युनिकेशन के साथ अपने रिश्ते को मैनेज करना जरूरी है। और ये की पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बढ़िया चलेगा। और अगर तब भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो थोड़ा सा टाइम और दीजिए या फिर छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा लगता है। सर आपको, आप एग्री करते हैं या नहीं थोड़ा बता दीजिए।
0: हर किसी
1: क्योंकि
0: को
1: आप टेंशन
0: नहीं मिलता,
1: बिल्कुल टेंशन लेके नहीं रहना,
0: नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि तेरे जहां में प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं
1: मिलता, वहां नहीं मिलता, और कई बार एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यहां नहीं है, कोई बात नहीं। तो

ये जो छोड़ना है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। तो कई बार जो ज़रूरी ना हो या आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, उसको छोड़ना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से अपने रिलेशनशिप को मैनेज करके रखिए। फिलहाल बबीता त्रिपाठी आपसे कहती है बाय। आपके साथ थी मैं और साथ में मेरे थे डॉक्टर अनिल सेठी लाइफ कोच, जो कि आज बात कर रहे थे रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर। फिलहाल

आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन और अब बात घर परिवार की जिंदगी की आशियाने की। जी हाँ, जिंदगी को जोड़ता, हमारे वजूद को पहचान देता हमारा आशियाना, हमारा घर। यूं तो घर का हर एक हिस्सा इम्पॉर्टेंट रहता है, वहीं बात रसोई घर की हो तो किचन रसोई घर को घर का दिल माना जाता है और घर के इस दिल की धड़कन होती है फ्यूल, ईंधन, हमारा रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, किचन में एलपीजी सिलेंडर के ख़त्म होते ही यूँ लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया है, रुक सा गया है। तो आज आशियाना प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम रसोई ईंधन को सेव कर सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर को, रसोई के ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। यूं ही आप बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मामगेन।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो आपके साथ मैं प्रियंका मामगन, प्रोग्राम आशियाना। और आज आशियाना में हम उन टिप्स की बात कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं जिन टिप्स को अपनाकर हम अपने रसोई ईंधन की बचत कर सकते हैं, रसोई गैस की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम फैक्ट्स की बात देखें और समझें तो जो LPG गैस है, जो ईंधन है, प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो प्रकृति में लिमिटेड है। खाना बनाने वाली गैस के भंडार पृथ्वी में एक निश्चित मात्रा में ही है और अगर हम उनका ज्यादा दोहन करेंगे, उन्हें बेजा इस्तेमाल करेंगे तो वो वक्त से पहले खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, ये जो फॉर्मूला है ये पूरी दुनिया के लिए है। अगर हमने बहुत ज्यादा गैस का इस्तेमाल किया, बेजा इस्तेमाल किया और सोच समझ के इस जो प्राकृतिक रिसोर्स है उसको नहीं इस्तेमाल किया तो एक वक्त आएगा जब ये पृथ्वी से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये जो हमें सुविधा दी है प्रकृति ने, भगवान ने, इसको हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जो प्राकृतिक गैस है उसको सही से इस्तेमाल करें। और आज आशियाना में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उन टिप्स के बारे में जिनको इस्तेमाल करके हम अपने रसोई घर में गैस का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बजट को भी, जी हाँ, अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, बजट को बिगड़ने नहीं दे सकते हैं। और बात की जाए रसोई गैस ईंधन की तो देखा जाए तो जी हाँ जनाब, बहुत ज़्यादा बजट को बिगाड़ भी देती है अगर आप सही से इस गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ज़्यादा दिनों तक आपकी गैस चले, आपका बजट बिल्कुल ना बढ़े, इसके लिए कुछ उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे आने वाले वक्तों में। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, कहीं मत जाएगा, यूं ही बनाए रखिएगा अपना साथ आकाशवाणी रेनबो के साथ।

आज आशियाना प्रोग्राम में हम रसोई गैस को बचाने के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में बात की जाए प्रेशर कुकर की, तो गैस बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जी हाँ, कुकर में खाना जल्दी पकता है जिससे गैस कम खर्च होती है। प्रेशर कुकर पूरी तरह से बंद होता है और भाप को अपने अंदर ही रखता है। इससे कुकर के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता है, क्रिएट होता है और इस हाई प्रेशर के कारण कुकर के अंदर का तापमान बहुत जल्दी से बढ़ता है जिससे खाना जल्दी पकता है। जी हाँ जनाब, और इससे खाना पकाने में ईंधन भी कम लगता है। जी हाँ, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम रसोई गैस की बहुत बचत कर सकते हैं और साथ ही जब हम प्रेशर कुकर में खाना बना रहे होते हैं और जैसे ही प्रेशर कुकर में पहली सीटी बजने वाली होती है तो गैस की फ्लेम को हमें कम कर देना चाहिए जिससे कि कुकर के अंदर जो प्रेशर बना है वो बाहर निकल कर वेस्ट नहीं हो जाए। और उससे होगा क्या, वो प्रेशर अंदर ही रहेगा और खाना जल्दी पकेगा। और जैसे ही प्रेशर की पहली सीटी आने वाली हो तो आप गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो जो प्रेशर बना हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा और गैस आपने कम कर दी है तो उसी प्रेशर में पहले वो खाना बनेगा और उसके बाद थोड़ा सा आप कुछ टाइम बाद आप उस फ्लेम को और थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा से कम कर दीजिए। इस तरीके से आप खाना बनाएंगे तो प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो वेस्ट नहीं होगा और कम गैस में आप अच्छे से खाना पका पाएंगे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
0: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मंगल भवन
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

क्या आप रोज जलेबी खा के अपनी भूख मिटा सकते हैं या फिर बाहर का खाना खा के रोज आपकी भूख मिट सकती है? बिल्कुल नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता है। हम सभी को घर का खाना बेहद पसंद है और घर का खाना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहता है। और घर का खाना हमें तभी मिलता है जब रसोई में रसोई गैस अवेलेबल हो, रसोई में ईंधन हो। और आज आशियाना प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन टिप्स की जिन्हें अपना कर आप अपने रसोई गैस को बहुत ज़्यादा दिनों तक चला सकते हैं। ना केवल आप अपनी गैस की बचत कर सकते हैं बल्कि अपनी जो पॉकेट है ना उस पर जो बोझ पड़ता है ईंधन का उसको भी कम कर सकते हैं। अभी हमने बात की प्रेशर कुकर के इस्तेमाल की जो बहुत बेहतर रहता है खाना बनाने के लिए। इसी के साथ अगर हम प्रेशर कुकर के सेपरेटर की बात करें तो क्या कहने जनाब, ताकत दुगनी हो जाती है। जी हाँ, प्रेशर कुकर में सेपरेटर लगाकर आप एक ही बार में कई सारी चीज़ें पका सकते हैं और ईंधन बचा सकते हैं। जैसे आप दाल बना रहे हैं तो सेपरेटर अलग बर्तन कुकर में सेट करके आप चावल भी पका सकते हैं, एक ही टाइम में दोनों चीज़ें पक जाएंगी। इसी के साथ आप सब्जी पका सकते हैं, गला सकते हैं सब्जियों को, और दो अलग अलग तरह की दालों को भी सेपरेटर का इस्तेमाल करके आप उबाल सकते हैं। दाल चावल बनाते हुए एक अलग बर्तन को कुकर में रखकर आप परांठों के लिए आलू भी उबाल सकते हैं, या फिर आप दाल में ही आलू छील के डाल दीजिए, उसकी मिट्टी को हटा के डाल दीजिए और जो दाल है उसी के साथ आलू को उबाल लीजिए और बाद में निकाल के उसके परांठे बनाइए। फ्री के परांठे मिलेंगे आपको। फ्री के मतलब कोई भी उसमें गैस नहीं लगी होगी, उन आलुओं को उबालने में किसी भी तरीके का ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा क्योंकि दाल तो हम उबाल ही रहे थे और साथ साथ हमने उसी दाल में आलुओं को भी उबाल लिया। इसी के साथ साथ आलू है, घिया, तोरी है, कद्दू है, ये कुछ ऐसी सब्जियां रहती हैं जिन्हें अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती या अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सेपरेटर का इस्तेमाल करके भी इसे कुकर में पका सकते हैं, बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए रसोई गैस की तो रसोई गैस में जी हाँ खर्चा तो बहुत कम आता है। खर्चा बहुत कम इसलिए आता है जब आप सही तरीके से समझदारी से उन टिप्स का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाते हैं जिनसे गैस की बचत की जा सकती है। और इन्हीं में से एक और टिप है, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम दाल बना रहे होते हैं तो दाल हम कुकर में उसको उबाल लेते हैं लेकिन जब हम उसको छौंका लगा रहे होते हैं तो छौंक लगाते हुए हम टमाटरों को काट के डालते हैं और टमाटरों को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा गैस का जी हाँ खपत होती है, इस्तेमाल होता है। तो जब दाल बना रहे हों तो जो साबुत टमाटर होते हैं उनको अच्छे से धो के दाल में ही डाल लीजिए और क्या होगा, टमाटर दाल के साथ ही उबल जाएंगे। जब आप छौंक लगाते हुए उन टमाटरों को पकाएंगे तो वो पहले से ही सॉफ्ट होंगे और ऐसे में समय भी कम लगेगा और साथ ही साथ ईंधन भी कम लगेगा और सब कुछ झटपट और कम समय में जी हाँ बन जाएगा। साथ ही साथ इसी के साथ एक और बात बताई जाए आपको तो खाना पकाने के लिए हमेशा अपने कुकर के आकार के अनुसार ही बर्नर का इस्तेमाल करें क्योंकि जब हम गैस स्टोव को देखते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के बर्नर होते हैं। अगर आपका कुकर बड़ा है तो आप बड़े बर्नर में उससे खाना बनाएं और अगर आपका कुकर छोटा है तो छोटे बर्नर का इस्तेमाल करते हुए कुकर में खाना बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने आपकी जो फ्लेम है, जो चूल्हे की फ्लेम है वो कुकर से बाहर जा रही है तो कहीं ना कहीं गैस वो वेस्ट हो रही है। इससे होगा क्या, जी हाँ गैस ज़्यादा लगेगी और क्या आगे खुद आप समझदार हैं।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी, जिंदगी निहाल और आसान हो जाती है जब हम रसोई घर में ईंधन से, रसोई गैस से मोहब्बत करने लगते हैं। जी हाँ, कुछ आसान से टिप्स जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड करके रसोई गैस की खपत में कमी ला सकते हैं। रसोई गैस एलपीजी बचाना न केवल हमारे मंथली बजट को बिगड़ने से रोकता है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हेल्पफुल रहता है। जब हम किचन में जाते हैं तो कई सारी दालों के डिब्बे हमें दिखाई देते हैं। जी हाँ, राजमा, उड़द, छोले, चने, मूंग दाल, लोबिया, कुल्थ की दाल और भी कई सारी दालें, और ये सारी दालें सख्त होती हैं और ड्राई रहती हैं। तो जब भी हम बिना इनको भिगोए एकदम से बनाने लगते हैं ईंधन में, तो ये ज़्यादा वक्त लेती हैं गलने में और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ईंधन वेस्ट चला जाता है। ऐसे में क्या करें, जब भी आपको दालें बनानी हो तो लगभग एक घंटा पहले इन दालों को धोकर भिगो लें और उसके बाद जब ये दाल नरम हो जाए, एक घंटे में बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाती है ये दालें, आप एक बार देखिएगा ज़रूर। राजमा की बात की जाए, छोले चने की बात की जाए, तो ये तो हम 4-5 घंटे पहले भिगो देते हैं। अक्सर मम्मियों को हम देखते थे कि अगर उन्होंने सुबह राजमा या छोले या चने बनाने होते थे तो वो रात को ही भिगो के रख देते थे, इससे गैस की बहुत बचत होती है। तो ये सारे मम्मियों वाले टिप्स हम भी इस्तेमाल करके गैस की बचत कर सकते हैं। और क्या होगा, दालें पहले से नरम होंगी तो उनको पकाने में कम समय लगेगा और ईंधन की बचत होगी। साथ ही साथ अक्सर हमें ये भी देखने को मिलता है कुछ घरों में कि अक्सर क्या होता है, फ्रिज में ठंडा दूध होता है, ठंडा खाना रहता है, वो सीधा फ्रिज से निकालते हैं और गैस पे उसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। होता क्या है, जो बर्तन है वो फ्रिज में बहुत ठंडा हो चुका होता है, फ्रिज जो बर्तन के अंदर खाना होता है वो भी ठंडा होता है, और ऐसे में उन खाने को गर्म करने में ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती है, ज्यादा ईंधन लगता है। तो इस चीज को भी हम अवॉइड करें तो हम बहुत सा ईंधन बचा सकते हैं, बहुत से अपने रसोई गैस की बचत

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन और बातें हो रही हैं, या फिर कहें कि बातें हो रही थी क्योंकि वक्त अब कह रहा है कि चलना होगा, लेकिन चलते चलते बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको बताने हैं। तो जब भी आप खाना पकाएं तो बर्तनों को ढक कर बनाएं, जिस बर्तन में आप खाना पका रहे हैं उसको प्लेट से या फिर जो उसका बर्तन का ढक्कन होता है उसे ढक कर पकाएं। इससे होगा क्या कि जो भाप है वो अंदर ही रहेगी और खाना जल्दी पकेगा, और अगर आपने खुला, अगर उसके ऊपर कुछ भी प्लेट नहीं रखी है, बर्तन को ढका नहीं है, तो फ्लेम उड़ती जाएगी, जो भाप अंदर बन रही है वो जो एटमॉस्फेयर है उससे मिलती जाएगी और कहीं ना कहीं खाना पकने में ज़्यादा वक्त लगेगा। इसी के साथ साथ खाना पकाने से पहले पूरी तैयारी कर लें। अक्सर क्या होता है कि जब हम खाना पका रहे होते हैं तो हमें ध्यान आता है प्याज काट लिए लेकिन लहसुन तो छिला ही नहीं है, अरे टमाटर कम पड़ रहे हैं थोड़ा एक दो और काट लेते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि हम जो गैस है उसे वैसे ही चलने देते हैं और ऐसे क्या होता है कि गैस वेस्ट होती जाती है। इसलिए जब भी खाना पकाएं तो पूरी तैयारी कर लें। जी हाँ, जो भी आपने काटना है, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो और धनिया हो या फिर टमाटर हो, उन्हें पहले से काट के रखें। सब्जी भी ऐसा ना करें कि गैस जला दें और उसके बाद में सब्जी भी काट रहे हैं और साथ में गैस भी जली हुई है, इससे बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट होती है। इसके साथ साथ जितना ज़रूरी हो खाना पकाने में उतना ही पानी डालें। अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है तो होगा क्या कि पानी को उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद उसको जो खाना है उसे पकने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी के साथ साथ जब आप खाना पका रहे हों तो ज़रूर देखें कि आपका जो बर्नर है, गैस का बर्नर है, उसकी जो फ्लेम है, जो लौ है, वो नीली है या फिर पीली है या नारंगी है, क्योंकि अगर नीली लौ है तो इसका मतलब आपका बर्नर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। वहीं अगर आपके बर्नर की लौ पीली है या फिर नारंगी दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं बर्नर अंदर से गंदा है और बर्नर के जो छेद हैं वो सही तरीके से गैस को रिलीज नहीं कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि खाना पकने में ज़्यादा वक्त लगता है और गैस भी वेस्ट हो रही होती है, क्योंकि वो निकल तो रही होती है लेकिन वो फ्लेम तक नहीं पहुंच रही होती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें अपना कर आप बहुत सारे ईंधन की बचत कर सकते हैं, और जब बचत करेंगे आप ईंधन की, रसोई गैस की, तो कहीं ना कहीं आप बचत कर रहे हैं अपने पैसों की और आपकी जेब भरी हुई है पैसों से, क्योंकि आपने वो टिप्स अपनाए हैं जिन्हें अपना कर आप अपना फायदा कर रहे हैं।
8: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: मुझसे प्यार करती हो? कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो, तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: यहाँ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत

0: छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
6: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
5: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
6: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway.
5: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman.
7: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. SEPA is a blueprint of our shared future.